साधना सरगम की आवाज़ में भी आपने सुना ये भजन, और अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और शोभा जोशी की आवाज़ों में ये कार्यक्रम के अंतिम भजन।

0: अलका याग्निक और शोभा जोशी के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, ऊंची नीची तथा ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक खेती किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि का ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी होता है। सीढ़ीदार खेती इस बात पर निर्भर करती है कि पानी की निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं। जिस मिट्टी पर खेती की जाती है वो एक पतली सतह होती है जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इस मिट्टी की गहराई कई इंच से कई फीट तक होती है, लेकिन ऊपरी सतह 6 इंच से 9 इंच तक ही होती है। इसी मिट्टी में कृषि कार्य होता है और यही उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रकृति को इस मिट्टी को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में मिट्टी कटाव से ये सारे बह जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे ढालू या ऊंची नीची भूमि को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि एक बार जो मिट्टी कटकर पानी या हवा के साथ बह जाती है उसे ठीक करना कठिन होता है। पहाड़ी भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना काफी लाभप्रद है। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर पाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। हमारे द्वीप समूह में वर्षा ज्यादा होती है, अतः यहाँ पर खेत इसी के अनुरूप बनाए जाएं। सीढ़ीनुमा खेत 8 डिग्री से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। खेत बनाने से पहले मिट्टी की गहराई की जांच कर लेनी चाहिए। जब मिट्टी गहरी हो तभी खेत बनाए जाने चाहिए। खेतों की चौड़ाई व एक खेत से दूसरे खेत की ऊंचाई पहाड़ी जमीन के ढाल पर निर्भर करती है। अधिक बारिश के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश के अधिक पानी को सफलतापूर्वक खेतों से बाहर निकाला जा सके। यदि खेतों का ढाल बाहर की ओर होगा तो पानी एक खेत से होता हुआ दूसरे खेत में चला जाएगा। इस प्रकार निचले खेतों में पानी की काफी मात्रा आ जाएगी। किसान भाइयों, ये न केवल ऊपर की उपजाऊ मिट्टी काटेगी बल्कि दो खेतों के बीच की ऊंचाई को भी काट देगी। अंदर की ओर ढाल देने से हर खेत का पानी अलग अलग निकाला जा सकेगा। इस प्रकार मिट्टी के कटाव की कम से कम आशंका रहेगी। खेतों में अंदर की ही ओर एक और नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता हुआ पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। इन सभी खेतों के अंत में एक ऐसी नाली ऊपर से नीचे बनाई जाती है जो सभी खेतों के पानी को एक साथ नाले में ले जा सके। इस नाली को या तो पक्का बनाना चाहिए या फिर बीच बीच में जंगली बल्लियों से लकड़ी का छोटा सा बांध सा बना दें, जिससे पानी बिना भूमि को काटे बह सके। जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा वैसे वैसे खेत की चौड़ाई कम होती जाएगी। यदि खेतों की चौड़ाई बढ़ाएं तो एक खेत से दूसरे खेत की ऊंचाई बढ़ जाएगी और फिर इसके गिरने का डर बढ़ जाएगा। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से पानी को सही प्रकार से कम गति के साथ खेतों से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार खेतों की उपजाऊ भूमि बच जाती है। साथ ही सीढ़ीनुमा खेत बनाने से प्रत्येक खेत की जुताई, गुड़ाई आदि अच्छी तरीके से हो सकती है। इस प्रकार से खेतों में फसल की दी गई खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी बहकर नष्ट नहीं होती है। दो खेतों के बीच जो ढालू जमीन होती है उस पर घास आदि उगाई जा सकती है। घास

0: वहां पर भूमि को काटने से रोके रहेगी और वहीं पर हमें पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराती रहेगी। इस प्रकार किसान भाइयों, पहाड़ी भूमि में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था सीढ़ीनुमा खेत के फायदे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी सुबह 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र

सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी बम्बुका आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा यह जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी जॉली बॉय आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा यह जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी बम्बुका कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान के श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा यह जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा यह जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर जाएगा और यह जलयान अगले दिन यानी बुधवार 30 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

Ya. लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल बे कल 29 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी सेंटिनल बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा तथा ये जलयान शुक्रवार 2 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। जलयान नालंदा कल सुबह 9 बजे नानकावरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकावरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है वतन, वह मिट्टी जहां हमने जन्म लिया, जहां हमारी यादें बसी है और जिसकी खुशबू हमारे दिल के बेहद करीब है। तो आइए सुरों के साथ महसूस करते हैं अपने प्यारे वतन की मिट्टी की खुशबू। वतन से मोहब्बत की भावना को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त कर पाना आसान नहीं। वतन से दूर रहने पर अपनी मिट्टी की याद और भी गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई दूर रहकर अपने प्यारे वतन को दिल से पुकार रहा हो।

दोस्तों, वतन से प्रेम केवल उसकी खूबसूरती को महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि उसके लिए त्याग की भावना है। जब हमारे देश की सीमाओं पर कोई जवान अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो उसके पीछे पूरे देश की उम्मीदें और विश्वास होता है।

0: वतन साथियों।
1: वतन की हिफाजत और उसकी आन बान शान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देश की सरहदों पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हैं और देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करते हैं। जब वतन की पुकार दिल तक पहुंचती है तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और भी प्रबल हो जाता है।

0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि इंद्रधनुष के इन रंगों की तरह हमारे दिल में भी अपने वतन के प्रति प्रेम हमेशा यूं ही कायम रहेगा। इसी खूबसूरत भावना के साथ अब दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: इंद्रधनुष।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 375वीं कड़ी। गायक कलाकार शोभना राव तथा संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 375वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार शोभना राव तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आयुष्मान भारत के 8 वर्ष और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उल्लेखनीय यात्रा पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक है चित्रकांत शर्मा।
1: 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पिछले सप्ताह अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इन 8 वर्षों में यह योजना देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में विकसित हुई है। 21 सितंबर तक देश में 48.51 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके थे। वहीं इसी वर्ष अगस्त तक योजना के अंतर्गत लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए, जिनका कुल मूल्य 2.03 लाख करोड़ रुपए का रहा। ये उपचार देश भर के 38,000 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए गए। योजना पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस अस्पताल उपचार उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत की विशेषता केवल अस्पताल में उपचार के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना नहीं है, इसके व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था ढांचे में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जैसी पूरक पहलें शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के करीब पहुंचाने तथा ई संजीवनी जैसी सरकारी टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञों से परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष 17 सितंबर तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित ई संजीवनी के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए जा चुके थे। आयुष्मान भारत की 8 वर्ष की यात्रा में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। सितंबर 2021 में शुरू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर तक 97.61 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा डिजिटल स्वास्थ्य पहचान सक्रिय हो चुकी थी। इनके साथ ही 119.95 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जोड़े जा चुके थे। इसके अतिरिक्त 5.78 लाख से अधिक सत्यापित स्वास्थ्य सेवाएं और 11 लाख से अधिक व्यवसायिक डिजिटल नेटवर्क पर पंजीकृत थे। आभा के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थानों के बीच सुरक्षित तथा इंटर ऑपरेबल तरीके से उपलब्ध कराने का डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है। भौगोलिक रूप से देश के मुख्य भूभाग से दूर स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विशेष महत्व है। पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के अनुसार 30 जून 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 72,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके थे और 2,912 अस्पताल प्रवेश योजना के अंतर्गत अधिकृत किए गए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर भी आयुष्मान भारत का विस्तार हुआ है। जुलाई 2024 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 129 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुष्मान

0: आरोग्य मंदिर आयुष की 6 इकाइयां भी स्वीकृत और कार्यात्मक थीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आयुष्मान भारत यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष जुलाई में सामने आई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 17 और 18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्र शासित प्रदेश को 2 अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सर्वाधिक पूर्व अनुमोदन यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्री ऑथराइजेशंस विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दर्ज करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में मिला। दूसरा सम्मान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री अर्थात HPR और हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री अर्थात HFR में संतृप्त पंजीकरण हासिल करने के लिए दिया गया। ये दोनों सम्मान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आयुष्मान भारत से जुड़ी 2 अलग-अलग पहलों स्वास्थ्य उपचार तक वित्तीय पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल एकीकरण में केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति को दर्शाते हैं। अगली यात्रा का केंद्र केवल अधिक कार्ड बनाना नहीं बल्कि समय पर उपचार, डिजिटल रूप से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था और दूरस्थ क्षेत्रों तक समान स्वास्थ्य पहुंच सुनिश्चित करना होगा।
1: श्रोताओं, अभी आप आयुष्मान भारत के 8 वर्ष और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उल्लेखनीय यात्रा पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। अब लीजिए सुनिए ये देशकांत।

श्रोताओं, संवेद स्वर में अभी आपने सुना ये देशगान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम का हाल। जनसेवा और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जिसके चलते समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को आज रात्रि 11:30 बजे तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके तहत आप फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप शारदा को सुन पाएंगे। 8:40 पर जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। 9 बजे फिल्मी गीतों का आनंद आप ले पाएंगे। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्मी गीत प्रसारित की जाएगी 9:45 पर। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत गाता चल कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। दिन में 11 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी। एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत आज आप लता मंगेशकर के गाए छंद गीतों का लुत्फ उठा पाएंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु में कार्यक्रम होगा गाना लहरी। साथ ही वर्ल्ड रेबीज डे पर डॉक्टर अश्विनी कुमार की वार्ता आप सुन पाएंगे। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला लयम। समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिल मिल गाएं 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का समय होगा 3:30। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा किन्मई गाँव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आपको सुनवाएंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप नसीम बानो चोपड़ा और जसवंत सिंह को सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में फास्ट बीट गीतों का आनंद लीजिएगा। बंगला कार्यक्रम शाम 5:30 पर, जिसमें आप वर्ल्ड रेबीज डे पर डॉक्टर अभिजीत रॉय से ली गई भेंट वार्ता सुन पाएंगे। साथ ही आधुनिक गीत भी प्रसारित की जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6 बजे, जिसके अंतर्गत KS गुर्जर से ली की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे। बातचीत का विषय होगा गोभी वर्गीय सब्जियों में IPM। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति सेवा संकल्प अभियान 6:30 पर प्रसारित की जाएगी। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर आप सुन सकते हैं। 7:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसके तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए।

0: 8 बजे 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके बाद गौरवगान प्रसारित की जाएगी। FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम छायागीत प्रसारित की जाएगी 9:30 पर। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। 16-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत यत् शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 8-2000 सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुम्बय्याः 16-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मन्त्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मन्त्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मन्त्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च सम्बन्धानां दृढीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषिमन्त्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृष्योत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थम् एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां सम्प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः काल

0: पर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरम नगरे प्रथमायाम् एकदिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन अष्टस्तोभैः विजयं समधिगतम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

सुनिए मौसम का हाल। आज सुबह स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 13.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ और सूर्यास्त का समय होगा 5:12। ये थी मौसम की जानकारी।

अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज दिन में 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप लता मंगेशकर के गाए चंद गीतों का आनंद ले पाएंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदग आनुपरस पयांसी नव अन्न पानम गुड़वैकृतम च प्रमेह हेदु कबकृच्च सर्वम। व्यायाम का अभाव, दिन में सोना, दही, जल एवं दलदली क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस का सेवन, नए अनाज, गन्ने के रस से बने पदार्थ जैसे चीनी, गुड़ आदि का नित्य सेवन प्रमेह रोग का कारण बनता है। आयुर्वेद अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी

0: पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल ने द्वीप समूह को रेबीज मुक्त बनाए रखने पर गर्व महसूस किया है। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा वर्तमान में शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे और आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है।

0: सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। पूरे विश्व के साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय एक साथ मजबूत रखा गया है, जो रेबीज के रोकथाम और उन्मूलन में सामूहिक तथा समन्वित प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल ने द्वीप समूह को रेबीज मुक्त बनाए रखने पर गर्व महसूस किया है। उन्होंने कहा कि लोगों और जानवरों की बढ़ती कनेक्टिविटी और आवाजाही के साथ इस उपलब्धि की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है। उन्होंने द्वीपों में पशु स्वास्थ्य सेवा, निगरानी और निवारक उपायों को मजबूत करने में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग तथा सभी संबंधित हितधारकों के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए द्वीपवासियों से अपना सहयोग देने का आग्रह किया है। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा वर्तमान में शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल पहले दिन उपराज्यपाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान और विश्व पर्यटन दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भरतपुर बीच पर आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रधान, स्वच्छता कर्मचारियों और जनता के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सभी से द्वीपों को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देने का आग्रह किया। इससे पहले शहीद द्वीप पहुंचने पर उपराज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर नैदानिक प्रयोगशाला, औषधालय और वार्डों सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता और समय पर मरम्मत की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्माणाधीन 10 बेड वाले वार्ड का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी केंद्र में अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने बच्चों और माताओं के साथ बातचीत की और केंद्र के पाठ्यक्रम, कामकाज और गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने मुत्तु कुमार स्वामी मंदिर का दौरा किया और भगवान मुर्गन की पूजा अर्चना की। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने शहीद द्वीप स्थित पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया और पुलिसकर्मियों की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों को नियमित गश्त करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा विदेशियों द्वारा अवैध तस्करी के खिलाफ प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शहीद द्वीप में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने द्वीपों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान जन संवाद कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उठाए गए मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग अलग बैठकें की और द्वीप के त्वरित और समग्र विकास के संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त, दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण विकास सचिव, उपराज्यपाल के सचिव और पर्यटन निदेशक उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगली

0: किट लेकर आया है। महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS, गर्भावस्था की देखभाल, गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं, प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें, अपने स्वास्थ्य को दे विशेषज्ञ देखभाल। आज ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 8900914124। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, अनन मार्ग रोड, जुंगलीघाट, श्री विजयपुरम।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे पशुपालक अपनी परिचित भाषा में जानकारी और बीमा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता, टिकाऊपन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पर्यटन विभाग की ओर से कल विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस वर्ष के उत्सव का विषय पर्यटन को पुनर्गठित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता था। इस अवसर पर विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। सप्ताह भर चले इस उत्सव के समापन अवसर पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव विनायक चामड़िया ने प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने खेल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आम जनता, विशेषकर छात्रों और युवाओं की सराहना की। पर्यटन में डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने बताया कि विभाग एक सिंगल विंडो सिस्टम विकसित कर रहा है। ये प्रणाली पर्यटन से संबंधित बुकिंग और सेवाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाएगी। उन्होंने कहा कि द्वीपों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कई पर्यटन नीतियां शुरू की गई हैं। सचिव ने बताया कि द्वीपों में वर्तमान में राधानगर में एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है, जबकि इस वर्ष के अंत तक 3 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने की उम्मीद है। सचिव ने लिटिल अंडमान में सर्फिंग के संवर्धन पर भी जोर देते हुए कहा कि मार्च 2027 के लिए वर्ल्ड सर्फिंग लीग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। विश्व पर्यटन दिवस और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कल द्वीप समूह के चिन्हित समुद्र तटों पर समुद्र तट स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों और स्थानीय समुदाय के बीच स्वच्छता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस अभियान में आम जनता, पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, छात्रों, युवाओं और पर्यटन हितधारकों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल ने द्वीप समूह को रेबीज मुक्त बनाए रखने पर गर्व महसूस किया है। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा वर्तमान में शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे और आज से शुरू होने वाले 3

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा वतन भारत केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव का प्रतीक है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, उसका सम्मान करना हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य है। सच्ची देश भक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से होता है।

एक सच्चा देशभक्त अपने वतन की एकता, शांति और प्रगति के लिए हमेशा प्रयास करता है। वह जाति, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर सभी देशवासियों को अपना भाई बहन समझता है। हमारे वीर सैनिकों का साहस और बलिदान हमें अपने देश से प्रेम करना और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना सिखाती है।

दोस्तों, हमारा देश भारत विश्व में सबसे प्राचीन और महान देशों में से एक है। भारत ने विज्ञान, शिक्षा, कृषि, खेल और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की है और इसे प्रगतिशील बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर क्षेत्र में लोग अपनी जिम्मेदारी को सच्चे निष्ठा से निभाने का प्रयास करें तो हम अपने देश को और भी ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कहते हैं छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता की कहानी लिखती हैं। श्रोताओं आज है 28 सितंबर और आज ही के दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता मंगेशकर भारतीय संगीत जगत के महानतम पार्श्व गायिका में से एक थी। उन्हें प्यार और सम्मान से भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से ही मिली थी।

लता जी ने बहुत कम उम्र में गायन की शुरुआत की। वर्ष 1942 में उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। शुरुआती दौर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी प्रतिभा, साधना और समर्पण के बल पर उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। आगे चलकर उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए।

दोस्तों, लता जी की आवाज़ में भावनाओं की अद्भुत गहराई थी। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम, विरह, भक्ति और जीवन के अनेक रंगों को अपने गीतों में स्वर दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, अजीब दास्तां है ये, और तेरे बिना जिंदगी से जैसे गीत आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हैं। उन्होंने हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी और कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए पार्श्व आवाज़ बनी।

0: दोस्तों गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर को उनके असाधारण योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। उन्हें भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ और संगीत की विरासत हमेशा जीवित रहेगी।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के आखिर में लता जी के लिए एक पंक्ति। आवाज खामोश हो गई मगर उनके सुर आज भी करोड़ों दिलों में गूंजते हैं।

तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए अपने रेडियो दोस्त सीमा को इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 28 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंह पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंक निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है। बीते एक इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पाकालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खून।

0: आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
2: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
5: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना

0: में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी

0: National Digital Public Infrastructure for Tourism Sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप शारदा के गाए गीतों को सुनेंगे।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप शारदा के गाए चंद गीतों का लुत्फ उठा रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं।

0: के समय 8:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की ये रिकॉर्डिंग।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने

0: बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तर बतर रहा। सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगातार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एंसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय बारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिला सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में वित्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, प्रवीण, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे

0: In an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोलिटैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
3: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
0: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
2: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
0: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 द जाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स येओन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
0: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down.

0: 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
3: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। Then in the archery range, individual competitions will start. We will have our eyes on men and women from both recurve and compound archery. In athletics, Gulveer Singh and Yunus Shah will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murali Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Badha Daud mein 400 meter mein, Purusho mein, Tamil सरन, तो महिलाओं में वित्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 meter की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल आल्सो फीचर इन द विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 meter स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तक्रो डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुभाव लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: श्रोताओं, अभी आप जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: प्यार में कभी कभी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान की आवाज में।
1: क्या आप जानते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में एचआईवी पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका एचआईवी स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका एचआईवी टेस्ट कराना या एचआईवी स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की एचआईवी टेस्ट के समय प्री और पोस्ट एचआईवी काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है

के और शिल्पा राव के गाए बचना ए हसीनों के इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूं दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड एचओडी एनडीएमए, एंड श्री अमित प्रोथी, डीजी सीडीआरआई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले। इस क्षेत्र में एक

0: इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे, नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेस आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सकें। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे तीन चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको तीन सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में, जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो एक्सपेंसेस
2: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि ये एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई, GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर GSDMA का एक किड, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ADB

0: की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली, तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो। और फिर GSDMA फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। GSDMA के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, CDRI भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में हैं, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सके और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सके, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, पर वो गया नहीं टेक्स्ट। और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
0: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था, तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको

0: बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था। और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है, उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय में मैं महाराष्ट्र में था, तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था। तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था, और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब तक मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी, और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को, उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में, तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
2: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा, स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं, तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है, एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है, जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पर काफ़ी अटेंशन हमने पे करना है, और NDMA के साथ हम इस पर थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो

0: या गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
1: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था। लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई, उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहाँ हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सकें। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूँगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
0: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं सीडीआरआई का मॉडल समझू, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझू, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
2: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले, कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
0: हीट वेव।
2: हीट वेव, हीट वेव लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है, 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत, तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे, आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसकी, जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफ़ी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफ़ी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
0: गर्मी।
2: गर्मी, बट फ्लड्स, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज़ शुरू हो गई है वाइल्ड फायर अभी, अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा, काफ़ी शहर में भी, तो ये सब चीज़ों में जनरली ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 degrees वार्मर ग्लोबली में, पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल उस सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियल बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इस पे काम भी होने लग गया है काफ़ी।
0: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें, तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई?
2: है, और मैं चाहूंगा कि कृष्णा जी भी इस पर

0: की तरफ बात करें, हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है। G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राज़ील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूँगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें इस्टेब्लिश हुए हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए। इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है, और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पर किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पर हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
1: डॉक्टर,
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है। अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफी कमी आई है और काफी नियंत्रण हमने किया है। जैसे हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है
1: अच्छा।
2: जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूंगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में। कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं। करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहाँ हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीजों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज्यादा रेजिलियंट कर सकें, ज्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लोव जैसे

0: बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग
0: जी
1: सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम
0: जी
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इंपैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ

0: बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग
0: जी
1: सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम
0: जी
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से। साइको सोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था। और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें ताकि ये सब चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया। हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए। आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए, तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। उस पे अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज़ उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत, एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसा आप ध्यान दें, कैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
0: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10:02 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चक दे इंडिया से, जिसे गाया है हेमा सरदेसाई ने, बोल जयदीप सहनी के हैं तथा संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म पीके से, आवाज़ें हैं शान और श्रेया घोषाल के, बोल स्वानंद किरकिरे के हैं तथा संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

न्यू ईयर इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, बोल है इरशाद कामिल के।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला

0: हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: सुनिधि चौहान और रेशमा सतीश की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म खूबसूरत का ये गीत। बोल इकरम राजस्थानी के हैं तथा संगीत दिया है स्नेहा खानवलकर ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म क्रिएचर 3D से। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह के, बोल तथा संगीत दिया है टोनी कक्कर ने।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सिंगम रिटर्न्स, इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है अंकित तिवारी और तुलसी कुमार ने, बोल संदीप नाथ के हैं तथा संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

सलमान खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म किक का ये गीत। बोल कुमार के हैं तथा संगीत दिया है मीट ब्रोस अनजान ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस

0: की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म हीरोपंती का ये गीत।

मोहम्मद इरफान की आवाज़ में आइए सुनते हैं एक्सपोज फिल्म का ये गीत। बोल समीर अनजान के हैं तथा संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है भूतनाथ रिटर्न्स फिल्म से। आवाज़ें हैं ऋतु राज के, बोल मुन्ना धीमन के हैं तथा संगीत दिया है राम संपत ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं NCERT की 1381वीं कड़ी।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।

0: संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुंगराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
1: जी,
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
1: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
1: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
1: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
1: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
1: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है दक्षिण गंगो

0: गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
3: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार

0: वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
1: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
2: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं
5: जाने क्या
2: मसला
1: है। ठीक है, चलो
3: भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा।
1: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
6: शोक सूचना?
1: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
1: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
1: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
1: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
1: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
4: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
1: साथियों, उनका पार्थिव

0: शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
2: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा,
4: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
5: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
6: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
5: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
6: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
5: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
6: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
5: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
7: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
1: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
7: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
1: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
7: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
1: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
7: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
1: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
7: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हत

0: तब रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो, तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी सहायता दे।
2: पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरिजाफ वन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो, ओह, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
6: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
4: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली, आया गौर काली, फायर।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा

0: उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: चिट्ठी आई है, माँ देखो।
3: चिट्ठी ला दिखा तो।
4: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है।
5: जिंदा है? अरे बहुत खुशी का बेटा। जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
7: जगबंधु,
6: चेतना,
7: अर्शद,
6: सौम्या,
7: प्रसून
6: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
7: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1381वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत।

मैं हूं आपके साथ प्रीति और आज की तारीख है 28 सितंबर। दोस्तों, आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे पवित्र और खूबसूरत दिन है। आज ही के दिन इस दुनिया में एक ऐसी आवाज़ ने जन्म लिया था जिसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी धुनों पर गुनगुनाना सिखाया। जी हाँ, आज हमारी प्यारी आदरणीय और शुरू की मल्लिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मतिथि है। तो चलिए आज इस सुरीली सफ़र की शुरुआत करते हैं लता जी के इसी सदाबहार नगमों के साथ। सुनिए और खो जाइए शुरू की इस दुनिया में।

लता जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज़ कभी बेसुरी नहीं होती। महज 13 साल की उम्र से शुरू हुआ उनका यह सफ़र देश की आवाज़ बन गया है। अगला गीत हमें सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जिंदगी को एक गीत की तरह गुनगुनाते रहना चाहिए।

0: संगीत के इस सफ़र में अब वक्त हो चला है एक ऐसी धुन का जो सदियों से आशिकों के दिलों पर राज कर रहा है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े बेहतरीन और यादगार रोमांटिक गानों में से एक उनके ये गीत है।
1: इंडिया।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: दोस्तों, लता मंगेशकर जी की आवाज़ एक ऐसी है जिसे सुनते ही दिल भावनाओं से भर जाता है। उनकी मधुर आवाज़ ने अनगिनत गीतों को अमर बना दिया है। उनके गानों में प्यार भी है, विरह भी है और ज़िंदगी के नाजुक रंग भी है। जब उनकी आवाज़ गूंजती है तो लगता है कोई पुरानी खूबसूरत याद फिर से लौट आई है। तो आइए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, लता जी भले आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। आइए हम उनकी उस मधुर आवाज़ को याद करते हुए इस गीत को अपने दिलों में संजोए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है ये गीत आपके दिल को उतना ही छुएगा जितना हमारे दिल को छूता है।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंह संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुधन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए

स्थित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं समूहगान शिक्षण का कार्यक्रम।
1: प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें

0: एक मराठी गीत सिखा रहे हैं। इस गीत के गीतकार हैं आनंद राव टेकाड़े और इसके धुन एक पारंपरिक धुन के आधार पर श्री कानू घोष ने तैयार की है। अब तुम कागज और पेंसिल लेकर बैठ जाओ और यह गीत लिख लो।
1: आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा, आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा, सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी, सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी, सत्यासी मानी राजा हा हिंद देश माझा, जगदीश जन्म घेई पदवीस थोर नेई, जगदीश जन्म घेई पदवीस थोर नेई, चढ़वी स्वधर्म साजा हा हिंद देश माझा, जनकादि राजयोगी शुकवास देव त्यागी, जनकादि राजयोगी शुकवास देव त्यागी, घुमवीति कीर्ति बाजा हा हिंद देश माझा, गंगा हिमाचलाची वसती जिथे सदाची, गंगा हिमाचलाची वसती जिथे सदाची, हो ऊनी राही कलिजा हा हिंद देश माझा, पृथुराज सिंह शिवजी स्वातंत्र्य वीर गाजी, पृथुराज सिंह शिवजी स्वातंत्र्य वीर गाजी, करती रणात मौजा हा हिंद देश माझा, टिळकादि जीव देई प्रसवूनी धन्य होई, टिळकादि जीव देई प्रसवूनी धन्य होई, धरती स्वलोक काजा हा हिंद देश माझा, जगी त्या विना कुणीही स्मरणीय अन्य नाही, जगी त्या विना कुणीही स्मरणीय अन्य नाही, थोरात थोर समजा हा हिंद देश माझा।
0: हाँ तो बच्चों, तुमने पूरा गीत लिख लिया। अब कानू घोष जी और उनकी सहायिका श्रीमती अनुराधा भिड़े ये गीत तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम इनके बताई हुई धुन पहले ध्यान से सुनो और फिर उसे गाते हुए इसका पूरा अभ्यास करो।
2: रेडी। आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा,
3: आनंद कंद ऐसा हा हिंद देश माझा,
4: सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी,
3: सत्यासी ठाव देई वृत्तीस ठेवी न्यायी,
4: सत्यासी मानी राजा हा हिंद देश माझा,

आखिर में तीन बार हा हिंद देश माझा, हा हिंद देश माझा, हिंद देश माझा गाने का है, उसकी धुन सुन लो। रेडी, वन टू

हाँ तो बच्चों, ये गीत तो तुमने सीख लिया। अब सब मिलकर एक बार पूरा गीत गाओ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:42 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम, गाने के बोल लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुँचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है तिरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, पारमनी वर्मा और साथियों की, जो सुनना चाहते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम, गाने के बोल लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुँचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है तिरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारमणि वर्मा और साथियों की, जो सुनना चाहते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

अगली फरमाइश हमने ली है छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी और साथियों की। ये सुनना चाहते हैं आए दिन बाहर के फिल्म का ये गीत।

मेरा साया इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और साथी।

अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78 kilogram Kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bags silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री

0: चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी,

0: आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
3: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
2: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
4: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
2: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
5: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
6: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण

0: कोरिया की स्योंग सुयोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मौसम। जन सेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, जिसके चलते समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा तथा मछुआरों को आज रात्रि 11:30 तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमसे आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
3: विविध भारती
4: FM श्री विजयपुरम
5: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

दिल की बात हर कोई कह नहीं पाता, चाहतों का सिलसिला कभी थम नहीं पाता। आपकी हर पसंद को पूरा करने आए हैं हम, क्योंकि आपकी फरमाइश के बिना ये दिल रह नहीं पाता।

0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो मैडम।
0: हेलो
1: हेलो।
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम आशा है, बिहार से।
0: जी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैडम।
0: तो आशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: जी मैं बिहार में रहती हूँ मैडम।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं धड़कन फिल्म का दूल्हे का सहरा सुहाना सुनने चाहती हूँ मैडम।
0: जी जी, आपको जरूर सुनवाया जाएगा ये गीत। तो आशा जी बताइए, आप क्या करती है?
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: बढ़िया बढ़िया। तो आशा जी, आपका इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर
1: हाय
0: फ्रेंड,
1: हाय
0: हाय। मेरी बात निशा जी से
1: मैडम,
0: हो
1: कैसी
0: रही है?
1: हैं? हाँ जी, मैंने

0: है कैसी
1: जी कैसी है निशा
0: है
1: जी।
0: मैम आप
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है
0: जी। मैं तो बहुत मस्त हूँ।
1: जी। निशा जी बताइए आप कहाँ की रहने वाली हो।
0: मैं नील आ
1: श्रोताओं, लगता है हमारा इनसे नेटवर्क टूट चुका है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी मैम,
0: जी, अपना परिचय दीजिए। आपका नाम?
1: जी मैं दिया बड़ो आश्रम से।
0: जी, दिया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: डीडर मूवी का।
0: जी, हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे ये गीत।
1: जी मैम।
0: जी तो जी, दिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैम, मेरी छोटा सा दुकान है मैम,
0: जी, किस चीज़ का दुकान?
1: वो कसूती।
0: अच्छा, तो चलिए जी, आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा ये गीत, और आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार, मेरी बात अविनाश जी से हो रही है?
1: जी जी बिल्कुल, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं अविनाश जी?
1: जी जी बहुत बढ़िया है। और आज की खास मौके पर मुझे विजयपुरम से याद किया गया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है हम सब के लिए। क्योंकि हम सब के लिए जो भारत के सुर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता जी का आज जन्मदिन है, तो
0: जी जी
1: उनको
0: जी
1: मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: जी जी जी
1: जी जी और एक और खास दिन है हमारे जो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी भगत सिंह जी का, आज उनका भी जन्मदिन है, तो उनको भी
0: जी जी
1: श्रद्धांजलि
0: जी
1: अर्पित करते हैं। जी
0: जी
1: जी आज देखिए इन महान हस्तियों की जन्मदिन के मौके पर मुझे आज से विजयपुरम से कॉल आया, तो
0: जी
1: मुझे बहुत ही ढेर सारी खुशी हो रही है।
0: जी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी।
1: जी जी बिल्कुल
0: तो बताइए, आज के कार्यक्रम में आपने कौन सा गीत सोचा है?
1: जी जी तो मैंने जो लता जी और भगत सिंह के नाम लिया, तो इन दोनों की याद में लता जी की आवाज़ में और भगत सिंह जी की भी आवाज़ में एक देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं। तो ये आवाज़ है लता जी का और तो साथ में उदित नारायण जी की आवाज़ है, और ये मूवी का नाम है वीर दारा, गाने के बोले हैं ऐसा देश है मेरा।
0: जी,
1: जी
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपको
1: जी
0: आपका
1: और
0: पसंदीदा ये गीत।
1: जी जी और दो चार दोस्तों को याद कर लें। हेलो,
0: जी
1: और दो चार दोस्तों को याद कर लेते हैं।
0: जी जी जी बताइए ज़रूर।
1: जी, तो पहले तो तनुश्री जी हैं, राकेश जी हैं, और पूरन वर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, और सत्यमेव विष्णु कुंडू जी हैं, और अभी तमाम जो सुनने वाले हैं सबके लिए डेलीगेशन पे रहेगा, खास करके हमारे उन सेना से जो हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं उन सभी के लिए डेलीगेशन पे रहेगा।
0: जी जी जरूर सुनवाते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा ये गीत।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: जी नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, मेरी बात योगेश जी से हो रही है?
2: जी मैडम।
1: जी कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया मैडम।
1: जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम इंदौर मध्य प्रदेश से।
1: जी जी, वहाँ मौसम कैसा चल रहा है योगेश जी?
2: मैडम यहाँ तो बहुत गर्मी है, इस बार का यहाँ पानी मतलब जितना एवरेज होना चाहिए इसका 50% ही हुआ है, लगभग कम हुआ है।
1: बारिश ज्यादा नहीं हुई है?
2: नहीं मैडम बहुत गर्मी, यहाँ का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उसके हिसाब से क्या आवश्यकता 40 इंच की रहती थी, 20-22 इंच की हुई है खाली।
1: जी जी जी,
2: बहुत गर्मी का है।
1: तो पहले बता दीजिए आप इस कार्यक्रम के जरिए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
2: मैम लक्ष्य पिक्चर का गाना है मैं ऐसा क्यों हूँ।
1: जी जी जरूर सुनवाएंगे, तो बताइए ये गीत आप किनको डेडिकेट करेंगे?
2: हमारे साथ में हमारे साथी लोग हैं जो है, जितेंद्र उपाध्याय है
1: जी,
2: भूषण पाटिल है, योगेश रामशंकर है, नानक राम है, दीपक है, राम जी है, हम सभी जो कंपनी में काम करते सभी साथ में सुनते हैं।
1: जी जी
2: जी, सभी
1: को जी जी जी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो
0: मेरी बात निर्मला जी से हो रही है?
1: जी। हाँ,
0: जी निर्मला जी, कहाँ से बोल रही है?
1: मैं कृष्णाबाद से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप और क्या कर
1: ठीक
0: रही
1: है,
0: थी इस वक्त?
1: अभी तो मैं लंच करके ऐसी बैठी थी फिलहाल।
0: अच्छा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइए, कृष्णाबाद का मौसम कैसा है? बारिश वारिश आ रहा है?
1: नहीं, आज तो मौसम बहुत ठीक है।
0: जी
1: पहले
0: जी
1: 2-3 दिन तो बहुत बारिश था।
0: जी जी जी तो बताइए, आज के कार्यक्रम में आपने कौन सा गीत सोचा है?
1: कभी अलविदा ना कहना का मितवा सॉन्ग।
0: जी, और बताइए किन किन दोस्तों को डेडिकेट करेंगे आप?
1: ये मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार। मेरी
1: ग्राम
0: बात
1: हीरा
0: जी
1: जी
0: मेरी बात भगवान जी से हो रही है?
1: जी हाँ दीदी, ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और आपके कार्यक्रम में जुड़ा बड़ी खुशी हो रही है दीदी। आपने हमारे पास कॉल लगाया, बहुत खुशी हो रही है दीदी आज।
0: जी जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: तो बताइए, आप गाने का शौक रखते हैं सुनने का?
1: दीदी मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, मैं बचपन से ही गाने सुन रहा हूँ दीदी। करीबन 8 साल की उम्र का था जब से गीत सुन रहा हूँ। विविध भारती मुंबई और विविध भारती भोपाल से सबसे पहले इनको सुन रहा था दीदी।
0: जी, कैसे गाना
1: और आप
0: गाने सुनना पसंद करते हैं, नए या पुराने?
1: दीदी? मुझे 90s के गाने ज्यादा पसंद है जी।
0: ओ ठीक, तो बताइए आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: दीदी आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है फर्स्ट लव लेटर और गाने के बोले दीवानी दीवाना तेरा हो गया। वो कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं दीदी?
0: जी जरूर जरूर बताइए दोस्तों के नाम।
1: पहले हमारी बहन है पूर्णिमा दीदी है, सप्तमी विष्णु कुन्नू जी है, और दीपाली जी हैं, स्वाति जी हैं, प्रेमजी चक्रवर्ती जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, गजराज लोधी जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, पूनम दीदी हैं, बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी हैं, और लोकेन वर्मा नाना खराब बरसते हैं।
0: जी, इन सभी के साथ आपको सुनवाते हैं ये गीत, और आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ लगता है कि रास्ते ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर दिल कहता है एक नई शुरुआत की जाए, कुछ पुराने बंधनों को पीछे छोड़कर कुछ नए सपनों को साथ आगे बढ़ा जाए।

दोस्तों, मोहब्बत का ऐसा जब दिल में उतरता है तो हर धुन कुछ कहने लगती है। कभी इंतज़ार, कभी याद और कभी किसी अपने से दिल की बात।

दोस्तों, ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत है ना। कभी खुशियों की धुन, कभी गम की सरगम, और कभी यादों का कोई प्यारा सा नगमा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामने इंगे रोकर हमांग इंगे रिये तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: Min kahtalo ni ing harap

0: Tiketnya, Lydia Mordecai, Fred Harry, The Gregory Soul, nuntahe menemana ha angitin keke ingi program. Hoi hangat lang ha angin nga sin tanga muhik in hurit ay hang rong ita kasata, ita fan kan ro ta laharap nga yen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

अभी हम सुगम संगीत के कार्यक्रम में नसीम बानो चोपड़ा की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र

इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कुछ फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप युवाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुन पाएंगे डॉक्टर के एल गुर्जर के साथ की गई बातचीत। विषय होगा गोभी वर्गीय सब्जियों में आईपीएम। शाम 6:30 पर सुनिए सेवा संकल्प अभियान पर क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति नेचुरल फार्मिंग। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर की जयंती और विश्व रेबीज दिवस पर चर्चाएं। तत्पश्चात गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुन पाएंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सवेरे 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार। तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिव्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का विषय होगा कृषि तकनीकी की प्रणालियाँ। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा धड़कन शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सुबह 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएँ। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे विश्व हृदय दिवस पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक, जिसके अंतर्गत विषय होगा हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। विशेषज्ञ होंगे CMO नोडल ऑफिसर NPNCD डॉक्टर बी अजित कुमार। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे महेंद्र कपूर व साथी और अनुराधा पौडवाल। कुछ फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9 बजे। सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। गीत गात चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 11:30 पर सुनिए चित्रगीत कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे हरिहरन और चंदन दास। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा जिसमें आप नॉनस्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 में हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

अभी आप अभिजीत और अलका याग्निक का गाया खिलाड़ी फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे अनवर सागर तथा संगीतकार थे जतिन ललित। अब बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए दलाल फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत। बोल है रानी मलिक के तथा धुन बनाई है अन्नू मलिक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ ही बहारों की शाम कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अप्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।

0: இசையருவி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நேர்களே.
1: Let me see.

अभी आप तनल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: लेकिन अच्छे संस्कार और मधुर व्यवहार हमेशा याद रहते हैं। इसलिए जीवन में इतना ज़रूर कमाएं कि ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन साथ ही इतना अच्छा व्यवहार भी कमाएं कि लोग आपको आपकी अनुपस्थिति में भी सम्मान से याद करें। तो साथियों, धन से ज़्यादा मूल्यवान अच्छे संस्कार, व्यवहार और लोगों के दिल में बनाई गई जगह होती है। आज के इन्हीं विचारों के साथ चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, मशरूम उत्पादन में उपयोग में लाए जाने वाले माध्यम जैसे पुआल का गर्म पानी उपचार क्यों किया जाता है? प्रश्न आप एक बार फिर सुन लीजिए। मशरूम उत्पादन में उपयोग में लाए जाने वाले माध्यम जैसे पुआल का गर्म पानी उपचार क्यों किया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। और अब चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों में IPM। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर KL गुज्जर जी।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे हमारे इन द्वीपों में जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं उनमें लगने वाली बीमारियों और कीड़ों के संदर्भ में, और इनका प्रबंधन आप IPM यानी जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन है इस तकनीक के सहारे कैसे कर सकते हैं, यानी जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम करके जो दूसरी नियंत्रण की तकनीकें हैं उनका समावेश करके आप कैसे इन फसलों में पौध सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के प्रभारी डॉक्टर KL गुर्जर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक गोभी वर्गीय सब्जियों का सवाल है, तो हमारे इन द्वीपों में मुख्य तौर पर इन फसलों में कौन से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है?
2: आपने पूछा कि हमारे द्वीप में जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनमें जो पत्ता गोभी और फूल गोभी है
1: जी,
2: इसका जो शीतकालीन जो सब्जियां हैं उसके रूप में इसका प्रयोग जो उत्पादन है वो लेते हैं, तो विशेष रूप से उत्तरी अंडमान में इसका उत्पादन अधिक होता है। तो इसके अंदर जो कीड़े और बीमारी है वो अपन यहाँ बात करेंगे उसके बारे में कि बहुत सारे कीड़े और बीमारी इसमें आते हैं। तो अगर अपन देखते हैं शुरुआत में कि जब फसल बोते हैं तब से लेके और उसकी कटाई तक जो रोग और बीमारी आते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी के अंदर जो डैम्पिंग ऑफ एक डिजीज़ है, बीमारी है, वो देखने को मिलती है।
1: अच्छा, नर्सरी में से ये बीमारी शुरू हो जाती है, तो इसमें क्या लक्षण है गुर्जर साहब?
2: इसके लक्षण ये कि जो पौध होती है, जो पौध की जो जमीन की सतह के पास से जो हिस्सा है वो गल जाता है उसका।
1: अच्छा।
2: और जो पूरा जो पौध है वो नष्ट हो जाता है,
1: गिर जाता है जमीन में।
2: तो ये एक फफूंद से होती है और जिसको राइजोक्टोनिया फफूंद बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये क्या है कि इसकी जो जमीन की जो सतह के पास से जो है उसको गला करके और पूरा वहां से नष्ट कर देता है। अच्छा। इससे पूरा जो पौध है वो नष्ट हो जाता है,
1: नर्सरी में ही काफी नुकसान हो जाता
2: जी।
1: है। अच्छा, तो ये तो लक्षण हुए, तो इसके नियंत्रण के लिए जो हमारे IPM तकनीक है उसके तहत किसान भाई क्या कर सकते हैं नर्सरी में?
2: जी, आपने जैसे किसान भाई हैं तो सबसे पहले जो नर्सरी की मिट्टी है उसकी जो मिट्टी की जो तैयारी करते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो ट्राइकोडर्मा जो है अपना फंगस है,
1: जैविक
2: जो है जैविक फफूंद, उसको गोबर की खाद के अंदर अच्छी तरह से मिला करके।
1: अच्छा।
2: और जो मिट्टी अपने नर्सरी के लिए तैयार करते हैं उसके अंदर इसको मिला देना चाहिए पहले से ही। तो ये बहुत जो ट्राइकोडर्मा है ये इम्पोर्टेंट फफूंद है और ये इसका जो जो आद्र गलन या जिसको डंपिंग ऑफ कहते हैं उसका पूरी तरह से कंट्रोल करता है।
1: अच्छा, यानी जो बीमारी के फफूंद जमीन में मिट्टी में रहते हैं उन पर ये जो हम बाहर से फफूंद हमारे मित्र फफूंद जो ट्राइकोडर्मा है इसको डालते हैं ये
2: जी
1: उसको कंट्रोल में ला देता है, नियंत्रण में ला देता है। चलिए, तो एक बात हुई।
2: उसके अलावा बीज उपचार अगर करते हैं तो बीज उपचार को भी बीज को अपन जैसे ट्राइकोडर्मा से 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से कर सकते हैं। दूसरा, फिर अगर कोई कीट के जो इंसिडेंस को रोकने के लिए जो कार्बोफ्यूरॉन है, कार्बोफ्यूरॉन 3G है, उसको 0.3 से 0.6 ग्राम AI सक्रिय तत्व पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर पहले से डाल देंगे तो उसके जड़ के अंदर जो कीट लगता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा।
1: अच्छा गुर्जर साहब, ये जो ट्राइकोडर्मा भी हम मिट्टी में डालेंगे और कार्बोफ्यूरॉन भी डालेंगे तो कार्बोफ्यूरॉन से ट्राइकोडर्मा को कोई नुकसान तो नहीं?
2: नहीं, कोई नुकसान नहीं,
1: नुकसान नहीं होगा। चलिए
2: जी, इसके अलावा जो सुडोमोनास पाउडर होता है उसको भी अपने यूज ले सकते हैं। तो सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों को अगर घोल बना करके 10 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके अगर ड्रेंचिंग करें तो वो और भी अच्छा रहेगा।
1: अच्छा, पानी

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, इंसान की असली पहचान उसके आसपास कितनी संपत्ति है इससे नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं।

0: कर नर्सरी
1: जी
0: में वो डाल दे, मिट्टी को
1: हाँ
0: भिगा गीला कर दे उससे।
1: जी।
0: अच्छा
1: इसके अलावा अगर कोई केमिकल जैसे यूज़ करना है, अगर सूडोमोनास नहीं है, ट्राइकोडर्मा नहीं है, तो अपने जो मैंकोजेब और जो कार्बेंडाजिम है उसका घोल बना करके, मैंकोजेब का 0.25% और कार्बेंडाजिम का 0.05% घोल बना करके वो भी डाल सकते हैं।
0: नर्सरी को गीला कर
1: हाँ,
0: सकते
1: तो
0: हैं।
1: इससे ये जो जड़ से पैदा होने वाले रोग हैं उसका मतलब उसकी नर्सरी अवस्था में ही उसका कंट्रोल हो जाएगा।
0: बिल्कुल। तो कुछ सब आपने ट्राइकोडर्मा का जिक्र किया, तो ट्राइकोडर्मा किस अवस्था में किसानों को मिलता है अगर वो लेना चाहें तो?
1: जी, ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिसको
0: अच्छा
1: पैकेट के रूप में ये अपने कैरी में इसका प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से ले सकते हैं। एक बार अगर ट्राइकोडर्मा ले करके उसको आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं खाद के ऊपर
0: अच्छा गोबर की
1: सब।
0: खाद में मिलाकर
1: हाँ,
0: उसको।
1: गोबर खाद एक बार लिया उसको, और थोड़ा गोबर खाद में डाल करके उसको नमी दे करके उसमें मल्टीप्लाई करके फिर उसी खाद को थोड़ा बचा कर रख के फिर आगे खाद में मिला सकते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है।
0: अच्छा जिस तरह से बीज रखकर
1: जी,
0: किसान बुआई करते हैं उसी तरह थोड़ी सी खाद को रखते हैं, फिर और खाद के साथ मिला के 15-20 दिन रखने से मेरे ख्याल से ट्राइकोडर्मा
1: हाँ
0: फिर ज़्यादा बढ़ जाए,
1: जी,
0: उसी
1: हाँ
0: तरह उसका आप बढ़वार कर सकते
1: हाँ
0: हैं। इसके बाद अब कौन सा स्टेप किसानों को
1: फिर
0: लेना है?
1: एक खरपतवार की अगर प्रॉब्लम देखते हैं, भाई खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है,
0: जी हाँ
1: तो उसके लिए अगर केमिकल वीडिसाइड यूज़ करें तो इसके लिए फ्लूक्लोरेलिन जो है, जिसको बैसालिन भी बोलते हैं, वो आप फ्लूक्लोरिन डाल सकते हैं आप,
0: अच्छा
1: 0.2 से 0.67 किलोग्राम सक्रिय तत्व
0: अच्छा
1: प्रति हेक्टेयर की दर से
0: अच्छा तो
1: मिट्टी में ही, जो बुआई से पहले मिट्टी में डालना
0: मुख्य
1: चाहिए।
0: खेत में,
1: जी
0: तो इससे खरपतवार नहीं उगेंगे।
1: जी
0: अच्छी बात है। तो खरपतवारों से भी काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि कीड़े और
1: हाँ, ये
0: बीमारियों
1: कि
0: को आश्रय
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: देते
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: ये।
1: तो इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि बुआई की अवस्था है तो, या फिर बुआई के बाद की अवस्था है, तो इसमें एक तो ब्लैक रोट जो डिजीज होती है
0: हाँ हाँ
1: बैक्टीरिया के द्वारा होती है वो
0: अच्छा
1: उसको जीवाणु के द्वारा, तो इसके नियंत्रण के लिए हमको जो है जो कार्बेंडाजिम प्लस जो आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है जो
0: एंटीबायोटिक
1: पाउडर है,
0: होता है।
1: हाँ,
0: हाँ
1: एंटीबायोटिक आता है, तो उससे अगर बीज उपचार कर दें पहले से ही तो इस
0: जी
1: रोग का कंट्रोल हो जाएगा।
0: अच्छा ब्लैक रॉट रोग के नियंत्रण के लिए पहले से
1: हाँ
0: बीजोपचार करके उसको नर्सरी में
1: जी,
0: डालें,
1: हाँ
0: तो
1: ट्राइकोड,
0: जिसमें आपने क्या कहा था कार्बेंडाजिम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।
1: हाँ दोनों को मिक्स करके 0.01% तो कार्बेंडाजिम और 100 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक घोल बना करके, 100 ppm मतलब ये 100 मिलीग्राम 1 लीटर जल में,
0: अच्छा
1: तो इसी तरह से इसे घोल बनाकर थोड़े समय के लिए अगर इसका ट्रीटमेंट भी दे देते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है
0: ब्लैक रॉट भी
1: बैक्टीरिया।
0: कंट्रोल
1: जी
0: हो
1: हाँ,
0: जाएगा। अच्छा
1: फिर अगर बाद में देखते हैं तो कीट की बात करते हैं, तो मेन जो फूल और पत्ता गोभी कीट आता है वो DBM जिसको बोलते हैं, डायमंड बैक मॉथ,
0: अच्छा
1: वो
0: तितली होती है ये।
1: जी तितली होती है, और इसके जो लार्वी हैं वो इसको नुकसान करते हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी की जो पत्तियां हैं वो हेड है उसको खाते हैं,
0: खाते हैं
1: तो इसकी जो लार्वी है वो पहले तो ट्रांसपेरेंट होती है, बाद में ग्रीनिश कलर की होती
0: अच्छा
1: है।
0: पहले पारदर्शी है बाद में हरापन लिए हुए रंग
1: हाँ
0: में आ जाते हैं, जो सुंडी इसकी होती है।
1: जी, और ये 25 से 30 दिन इसका जो है अंडे से, और जो प्यूपल स्टेज होती है पहले ये उसको फसल को नष्ट करती है और खाती है, उसके बाद में प्यूपा बन करके और रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है,
0: अच्छा
1: तो ये रेस्टिंग स्टेज में आकर के फिर उससे प्यूपा से अडल्ट बन के तितली बन जाती है, वही
0: अच्छा
1: तितली फिर अंडे देती है,
0: मतलब तितलियों से इसमें नुकसान नहीं होता, नुकसान सुंडियां करती है
1: सुंडिया
0: इसके।
1: करती है। जी हाँ,
0: अच्छा
1: तो इसके लिए जो है कि जो DBM है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रभावी उपाय ये है कि अपने जैसे जो अपने फूलगोभी और पत्ता गोभी की जो पंक्तियाँ लगाते हैं नर्सरी से मुख्य खेत में,
0: जी हाँ रुपाई जब करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसमें पहली दो पंक्तियाँ हैं उसमें सरसों अपने को लगानी चाहिए।
0: अच्छा
1: अच्छा, सरसों जब लगानी चाहिए, जैसे अपन मुख्य खेत में जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उससे 15 दिन पहले उस लाइन में सरसों की बुआई कर देनी चाहिए।
0: अच्छा
1: ठीक
0: मतलब
1: है
0: दो पंक्तियां सरसों की डाल दें 15 दिन पहले और
1: जी,
0: उसके बाद फिर फूलगोभी की रोपाई करें
1: हाँ,
0: या
1: तो
0: पत्ता
1: हर,
0: गोभी
1: हाँ
0: की।
1: जी
0: हाँ
1: हाँ, हर एक मतलब 25 पंक्तियों के बाद में दो पंक्तियाँ
0: सरसों की।
1: सरसों की बुआई करने से क्या होता है कि जो इसका जो ट्रैप क्रॉप का काम करती है पास फसल के रूप में, जैसे जो इसका पेस्ट होता है DBM वो पहले उस पे जाएगा, सरसों पे जाएगा, उसको खाएगा और वो सुरक्षित रहेगा।
0: अच्छा मतलब सरसों ज़्यादा उसको आकर्षित करेगा
1: जी
0: उस कीड़े को, और कीड़े अपना जो आक्रमण है वो सरसों तक ही सीमित रख लेंगे, और वहाँ
1: जी
0: पर फिर हम कुछ कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकेंगे,
1: जी
0: हमारी
1: हाँ
0: सब्ज़ी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा।
1: हाँ पहले तो 15 दिन पहले बुआई कर देनी चाहिए,
0: हाँ
1: उसके बाद जब पौध लगाने के 25 दिन बाद में जो पंक्ति रहती है उसमें फिर दोबारा बुआई करनी चाहिए सरसों की, ताकि उसका जो पेस्ट का इंसिडेंस कंटिन्यू उसी पर रहे, सरसों
0: अच्छा
1: की जो क्रॉप की स्टेज होती है उसको वो प्रिफर करता है पेस्ट,
0: हाँ
1: इसलिए हमको पहले बुआई से 15 दिन पहले बुआई करनी चाहिए सरसों के साथ में, और फिर पौध लगाने के 25 दिन बाद फिर लगानी चाहिए दो पंक्तियाँ, उसमें पहली पंक्ति में तो 15 दिन
0: 15 दिन
1: पहले
0: पहले के।
1: है
0: हाँ
1: और दूसरी पंक्ति में उसके
0: बुआई
1: 25
0: के
1: दिन
0: रोपाई के 25 दिन बाद फिर वहाँ
1: जी,
0: में।
1: और इसके अलावा जो पौध लगाते हैं उसको 35 दिन की जो एज हो जाए पौध की उस समय उसको खेत में लगाना चाहिए।
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: यानी
1: इसके
0: नर्सरी से जब मुख्य खेत में हम गोभी की

0: पौध लगाते हैं वो कम से कम नर्सरी में 35 दिन बाद ही हमें रोपाई करनी चाहिए।
1: जी, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड अगर यूज करें तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा
1: उससे क्या होता है कि जो मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसका जो मित्र कीट का जो है जो संख्या वो कम हो जाता है, इसलिए वो जो आपका सुंडी वो बढ़ जाती है।
0: जी
1: तो इसके अलावा जो ट्राइकोग्रामा किलोनिस जो है बायो एजेंट के रूप में, अगर वो हम टाइम से टाइम उसको रिलीज करें खेत में 4 से 5 बार 8 दिन के अंतराल पर, कार्ड की जो ट्राइको कार्ड होता
0: ट्राइको
1: है,
0: कार्ड होता है जी।
1: तो उसका इफेक्टिव कंट्रोल जो भी अपने लेपिडोप्टेरेंस है सुंडियां हैं उनको कंट्रोल इफेक्टिव करता है।
0: अच्छी बात है, तो किसान भाई आजकल ट्राइको कार्ड काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं, काफी खुश हैं
1: हाँ, तो
0: इससे।
1: जैविक उपाय के रूप में, जैविक नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: इसके बाद जो आपका बीटी है, जो बेसिलस थ्रुजेंस बीटी
0: थ्रिप्टोरेंजियोसिस।
1: जैसे, ये भी बायोपेस्टिसाइड है,
0: अच्छा
1: इसका अगर यूज करें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है।
0: अच्छा बीटी किस अवस्था में आता है, किस फॉर्म में आता है?
1: जी, ये पाउडर फॉर्म में आता
0: बेबी
1: है
0: पाउडर फॉर्म में
1: जी,
0: आता है,
1: और इसका एक 500 ग्राम का पैकेट 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है।
0: इसको घोल बना के छिड़कना
1: जी
0: है।
1: हाँ, घोल बना
0: अच्छा
1: करके, और स्टिकर वगैरह जो यूज करते हैं अपने, जो एफसीआईटी या और दूसरा कोई दूसरी कंपनियों का,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: वो जरूर उसमें पेस्टिसाइड के अंदर मिक्स करना चाहिए।
0: अच्छा ताकि वो मतलब अच्छी तरह से
1: जी
0: चिपका
1: जी
0: रहे पौधों पत्तियों के
1: क्योंकि
0: साथ।
1: जो फूल गोभी और पत्ता जो पत्ता गोभी है उसका राउंड शेप होता है, तो
0: हाँ
1: उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह जो इंसेक्ट हैं वो नीचे की तरफ छुपे हुए रहते हैं पत्तियों के अंदर,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जब तक उसको अच्छी तरह से वो पेस्टिसाइड या कोई दवा, नीम की दवा या कोई भी पेस्टिसाइड, जब तक उसके टच में नहीं होगा तब तक वो पेस्ट नहीं मरेगा, कीड़ा नहीं मरता।
0: अच्छा
1: तो इसलिए उसको डालने से वो जो घोल होता है वो उसके मतलब अंदर तक पहुंच जाता है।
0: तो कुछ साहब इसमें नीम वाली दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं इस कीड़े के लिए, नीम का
1: जी,
0: इस्तेमाल भी हो सकता
1: बीटी
0: है।
1: जैसे बताया है, इसके अलावा
0: हाँ
1: फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हैं उससे।
0: गंधपाश
1: हाँ
0: जी।
1: जी,
0: हाँ
1: इसका गंधपाश भी आता है डीबीएम का। इसके अलावा जो नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट या नीम जो कीटनाशी है उसका भी प्रयोग अपन कर सकते हैं।
0: जी
1: तो जो भी पेस्टिसाइड अपने यूज करें उसमें स्टिकर जरूर मिलाना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई दूसरे रोग हैं, ये तो अपने इसकी
0: मुख्य कीट
1: डीबीएम की
0: वाले
1: मुख्य जो कीड़ा है उसकी बात हो गई। इसके
0: डायमंड बैक माउथ
1: जी,
0: जिसे कहते
1: डायमंड
0: हैं।
1: बैक मोथ, ये मेन इसका कीड़ा है फूल
0: अच्छा
1: गोभी और पत्ता गोभी का। इसके अलावा जैसे आपका लीफ कैटरपिलर होता है वो भी इसको खाता है, तो ये सब जो भी कैटरपिलर के लिए जो आपके उपाय हैं ये आपके जो आपने बात की है उसके लिए प्रभावी हैं।
0: अच्छा तो गुज्जर साहब अक्सर ये शिकायत मिलती है कि गोभी वर्गीय सब्जियों में जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए किसान भाई अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का
1: जी
0: प्रयोग करते हैं, इससे जो गोभी वगैरह लोग खाते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: जी
0: तो मेरे ख्याल से आपकी सलाह उनको यही होगी कि अभी जो उपाय बताएं उसी को अपनाएं तो नियंत्रण हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नियंत्रण हो सकता है, और सावधानी अगर रखें शुरू से बुआई से और सही टाइम पर, तो बिल्कुल उसका नियंत्रण हो सकता है, और जो कीटनाशक रहित जो अपने को उपज है, जो सब्जी है, वो मिल सकती है।
0: अच्छा
1: तो इसके लिए ये जो है आपको सावधानियां जो की है, और अगर यूज करना पड़ा है तो नीम का या बीटी का या इसको ट्राइको कार्ड का ये आप
0: इस्तेमाल करें।
1: इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: ट्राइकोकार्ड का जो प्रभाव है खासतौर पर धान वगैरह में तो बहुत अच्छा पाया गया, किसानों से हमारी बात होती है
1: जी
0: किसान काफी खुश हैं, तो वही असर इस गोभी वर्गीय सब्जियों में भी मिलेगा उनको
1: जी
0: अगर
1: जी
0: प्रयोग में
1: बिल्कुल, जो
0: लाएं तो।
1: ट्राइकोग्रामा किलोनिस है वो जितना धान में इफेक्टिव है उतना ही इसमें इफेक्टिव रहेगा।
0: अच्छी बात
1: किलोनिस
0: है।
1: जो है वो बहुत है,
0: काफी
1: उसका
0: प्रभावी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ प्रभावी है।
0: चलिए तो साथियों अभी आपको गुर्जर साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से शुरुआती अवस्था से ही गोभी वर्गीय सब्जियों में आपको कीट नियंत्रण और बीमारी नियंत्रण पर ध्यान देना है, खासतौर पर ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास जो हमारे जैविक कीटनाशी हैं, उसके बाद गंधपाश है, नीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सब उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो जो जहरीले रसायन हैं इनका प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र जो कि डिगनाबाद पोर्टब्लेयर में है या फिर कृषि विभाग के जो प्रसार कार्यकर्ता आपके पास आते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। गुर्जर साहब आज आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने डॉक्टर KL गुज्जर से की गई बातचीत सुनी जिसका विषय था गोभी वर्गीय सब्जियों में IPM।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता

अभी साथियों आपने ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा। और अब चलिए हम आपको दे देते हैं एक छोटी सी जानकारी जिसका विषय है मिश्रित खेती से लाभ। साथियों मिश्रित कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की खेती एक साथ की जाती है। इससे किसान को अलग अलग फसलों से आय प्राप्त होती है और किसी एक फसल के खराब होने पर पूरी आर्थिक हानि नहीं होती। मिश्रित कृषि से भूमि पानी और श्रम का उचित उपयोग होता है तथा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। इससे किसान की आय के साधन बढ़ते हैं और खेती में जोखिम कम होता है। मिश्रित कृषि किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिश्रित कृषि में यदि किसी एक फसल को मौसम कीट या बीमारी के कारण नुकसान हो जाए तो दूसरी फसल से किसान को आय मिल सकती है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे किसान को अपनी जरूरत के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती है और बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है। मिश्रित कृषि अपनाकर किसान प्राकृतिक संसाधनों का

0: संरक्षण करते हुए टिकाऊ खेती की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार मिश्रित खेती किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। साथियों, अभी आपने मिश्रित खेती के लाभ के बारे में ये जानकारी हासिल की और अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, मशरूम उत्पादन में उपयोग में लाए जाने वाले माध्यम जैसे पुआल का गर्म पानी उपचार क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, माध्यम को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए इनका गर्म पानी उपचार किया जाता है। पहले पुआल को रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं और फिर 30 मिनट तक गर्म पानी में उबालते हैं ताकि सभी सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाए। अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इसी के साथ आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम का समय अब यहीं पर पूरा होता है। कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। अब जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति नेचुरल फार्मिंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। खेती केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी मिट्टी, पर्यावरण और किसान के भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में आज आवश्यकता है ऐसी कृषि पद्धति की जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए किसानों की लागत कम करने, मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सके। इसी सोच के साथ देश में प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर प्राकृतिक खेती क्या है या पारंपरिक खेती से किस तरह अलग है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावना

0: बनाए हैं और इसे अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा रहा है, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निदेशक कृषि विभाग श्री देवव्रत बसंतिया जी। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैडम, धन्यवाद मैडम।
0: आइए सबसे पहले आपसे जानते हैं कि प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसकी मूल अवधारणा क्या है।
1: जी, प्राकृतिक खेती जो है, इसमें सबसे पहले यही बोला गया है कि खेती को हम प्राकृतिक रूप से करें ताकि खेती में हमारी लागत भी कम हो और खेती की जो पर्यावरण है या मिट्टी की जो स्थिति है वो कंटिन्यू मतलब मेंटेन रहे, अच्छा रहे, ताकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ पिछले सालों में ये सब देखा गया है, पिछले कई दशकों से देखा गया है कि खेती जो है, प्रोडक्शन तो हमारी बढ़ रहा है, हमारी पैदावार बढ़ा है, हमारी भंडार भी भरा है, लेकिन हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता, हमारी पर्यावरण की जो संतुलन व्यवस्था, ये सब बिगड़ने के कारण हमने इस एक नया पहल की यहाँ सोचा गया, समझा गया, जिसको आज पूरा देश भर में चलाया जा रहा एक मुहिम की तरफ, तो हम प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। नेचुरल खेती में मैडम सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हम खेती को जितनी प्राकृतिक रूप से किया जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करके, ना प्रकृति को डिस्टर्बेंस किया जाए, ना मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया जाए, ना कोई भी हमारी केमिकल वगैरह उसमें यूज हो
0: जी।
1: तो इसमें एक कहने का मतलब यही है, खेती पूरी तरह से प्राकृतिक, जैसे भी आप देखो जंगल में भी पेड़ पौधा उगते हैं, वहाँ भी कई तरह का फल, कई तरह का सब, कई तरह का वनस्पति वहाँ उगते हैं, तो उसी तरह हम खेती को क्यों ना कर पाए, तो वो एक प्राकृतिक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। खेती की खेती तो होगा लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होगा।
0: सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए? सरकार किस तरह के बदलाव देखना चाहती है?
1: मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हमारा जमीन खराब हो रहा है
0: जी।
1: तो जमीन की मिट्टी जो हमारी बहुत बड़ा एक बेस है, मिट्टी को हम लोग माँ भी बोलते हैं, मिट्टी ही खराब हो रहा था पिछले कई सालों से, हमारी जो रासायनिक खाद के प्रयोग, रासायनिक दवाई के प्रयोग जो भी था, तो वो धीरे धीरे एक इकोसिस्टम को, एक पर्यावरण जो तंत्र होता है उसको बिगाड़ रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो हमला हो रहा था वो मिट्टी के ऊपर हो रहा था, तो इस खेती में एक मुख्य उद्देश्य रह गया मिट्टी में जो है, जिस हालत में है उसको रखते हुए हम खेती करें
0: जी,
1: ताकि हम उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करें। और मिट्टी में बहुत, आपको पता होगा मैडम, काफ़ी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, बहुत जगह में जाके उनको बड़ा भूमिका रहता है कि उस जीवाणु जो है कोई चीज़ को सड़ा देते हैं, कई चीज़ को मतलब फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो वायुमंडल में जो हमारी तत्व है, जो मतलब पोषक तत्व है जो पेड़ पौधों को चाहिए, वो वायुमंडल की जो एयर में जो चीज़ है उसको लाके फिक्स करते हैं मिट्टी में। जैसे हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन वो फिक्सिंग एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको वो सॉइल में लाके फिक्स करता है, तो वो पेड़ पौधों की इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन हमारी जो केमिकल खाद वगैरह था, जो रासायनिक दवाई था, जो ये खरपतवार को कंट्रोल करने की दवाई था, ये सब हमको नुकसान कर रहा था, वो कीड़ा ही, वो बैक्टीरिया मर जाते थे तो वो कीड़ा भी मरते, उसके साथ साथ हमारी कई सारी सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी में होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवाणु नहीं रहेगा तो मिट्टी में कुछ चीज़ सड़ेगा नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर इंसान के शरीर को भी हम मिट्टी में दफन देते हैं तो भी वो जीवाणु इसको सड़ाता है, बैक्टीरिया या कोई भी बहुत सारी माइक्रोब्स होते हैं उसको वो विघटन में काम करता है, लेकिन वो विघटन क्रिया धीरे धीरे बिगड़ रहा था कि हमारा केमिकल फर्टिलाइजर के पीछे। तो अब हमारी उद्देश्य यही है कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करके उसको स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए एक ऐसे पद्धति डेवलप किया जा रहा है या उसको प्रयास किया जा रहा है ताकि खेती भी हो और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बजाय रहे।
0: जी, प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक को और कीटनाशकों के स्थान पर
1: जी
0: किन प्राकृतिक तरीकों और संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है?
1: इसी प्राकृतिक खेती में मैडम वो रासायनिक और कीटनाशकों को संपूर्ण रूप से मतलब प्रतिबंधित किया गया है, इसको निषिद्ध किया गया है, किसी भी हालत में ये नहीं दे सकते, उसके बदले में हम कुछ तरीका

0: कुछ ऑर्गेनिक टाइप का चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम लोग को बहुत सारी इनपुट को जो एग्रीकल्चरल मतलब हमारी घरेलू में पहले से था, जैसे नीम का पत्ती, नीम का मतलब गाय का पेशाब जो है, गोमूत्र होता है, गाय का गोबर का यूज किया जाता है, उसमें पंचगव्य के यूज किया जाता है, घी, दूध, दही, जो भी सारी नेचुरल चीज़ है, कई सारी पत्तियों का बायो पेस्टिसाइड मतलब कई पत्तियों का भी पेस्टिसाइड के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो निमास्त्र, अग्निअस्त्र, ये सारी मतलब वो शुरुआत की बीज उपचारित से लेकर फसल की पकने तक
1: जी
0: कुछ ना कुछ हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट को यूज करते हैं, मतलब घरेलू टाइप का कुछ चीज़ को यूज करते हैं। वो एक ट्रेनिंग होता है हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, शुरुआत में मिट्टी जब बीज को उपचारित करेंगे क्या यूज करेंगे, जब फसल ग्रोथ स्टेज में होगा उसमें क्या लगा क्या स्प्रे करेंगे या क्या दवाई देंगे, या फिर फसल पकने के समय में क्या देंगे, ये समय की समय प्राकृतिक खेती एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, और इसको शुरुआत होती है मिट्टी की तैयारी करने से फसल कटाई तक।
1: जी
0: तो इसमें बहुत सारी हमारी लागत रहती है, बहुत सारी ऑर्गेनिक इनपुट रहता है, और उसका अलग अलग नाम है, जैसे हम प्राकृतिक खेती के जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उनको हम लोग बताते हैं कि बीजामृत कैसे बनाना है, घना बीजामृत कैसे बनाना है, निमास्त्र कैसे बनाना है, पंचगव्य को कैसे तैयार करना है। तो ये बहुत सारी मतलब जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की बहुत सारी पत्ती उसमें होता है यूज, नीम का पत्ती, करंज का पत्ती, बहुत सारी मतलब आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं
1: जैसे
0: जो
1: हम किचन गार्डन में
0: किचन
1: यूज
0: गार्डन में
1: करते
0: यूज
1: हैं।
0: करते हैं, मतलब
1: जी
0: घरेलू आयुर्वेदिक
1: जी
0: दवाई टाइप
1: जी
0: का, उस तरह चीज़ को हम लोग जब बड़े आकार में उसको यूज करते हैं, ड्रम में
1: जी
0: उसको, ये बड़ा एक पानी के ड्रम में बर्तन में बनाया जाता है, उसको कई दिन तक सड़ाया जाता है, उसमें गोबर और गाय गाय की जो मूत्र होता है, जो गोमूत्र होता है, उसमें काफ़ी मात्रा के यूज किया जाता है, कहीं बेसन का यूज किया जाता है, कहीं गुड़ का यूज किया जाता है, ये सब यूज करके हमने एक स्टैंडर्डाइज किए हैं,
1: जी
0: कुछ चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया। इस प्राकृतिक खेती के ऊपर बड़ा अनुसंधान भी रिसर्च भी हो रहा है, रिसर्च करते करते इसमें बहुत सारी चीज़ इफेक्टिव पा गया है, तो उसको हम किसान की ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं, तो वो उसी को वो यूज करके वो खेती करे। ऐसे नहीं है कि कुछ ना दे के खेती करे, कुछ तो इसमें भी देना पड़ता है, लेकिन जो एक एकदम नेचुरल तरीका से उगता है। जी।
1: प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के मन में अक्सर उत्पादन कम होने या बाजार उपलब्ध
0: हाँ
1: न होने जैसी आशंकाएं
0: जी जी
1: रहती
0: मैडम,
1: हैं।
0: उत्पादन कम होने की शुरुआत में संभावना रह सकता है, लेकिन प्राकृतिक खेती का जो तरीका अगर हम सीखे सही से सीखे
1: जी
0: तो उत्पादन मेरे हिसाब से कम नहीं होगा, उत्पादन मेंटेन हो सकता है, बट इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के मन में भी अभी तक वो
1: आशंकाएं
0: आशंका है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ प्राकृतिक खेती के लिए आप हाइब्रिड बीज यूज नहीं कर सकते, आपको
1: अच्छा
0: देसी बीज यूज करना पड़ेगा।
1: जी
0: हाँ, जो हमारी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से रेस्पॉन्स नहीं है, वो सब चीज़ को देखते हुए, और शुरुआत में थोड़ा दिक्कत है मैं मानता हूँ, बट वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, आप 1-2 साल खेती करोगे तो उसमें आपको अभ्यस्त हो जाओगे और पैदावार जो है आपको मेंटेन होने लगेगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा संदेह के अंदर रहेगा आदमी, उसमें थोड़ा घबराएगा ये क्या बता रहे, लेकिन ये जो एक लगातार एक सिस्टम में एक प्रक्रिया में आ जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा।
1: देश में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच
0: जी
1: किस तरह का समन्वय किया जा
0: मैडम,
1: रहा है?
0: प्राकृतिक खेती के विस्तार और प्रसार के लिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन प्राकृतिक फार्मिंग, ये एक मिशन के थ्रू से एक शुरुआत प्रोग्राम है जो पूरे देश में बहुत सारी राज्यों में ये चलाया जा रहा है, और कुछ राज्य उसमें बड़ी सफलता मिला है, साउथ इंडियन के कुछ राज्यों में बहुत सारी सफल उसमें मिला गया, गुजरात में कुछ जगह में उसको सफल किया गया है, उसको खेती ऑलरेडी शुरू हुआ है। तो इसको रखते हुए नज़र में तो हमारी अंडमान निकोबार प्रशासन जो कृषि विभाग है, इस खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी शुरुआत हुई थी साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान की जिला से जो परारगंज ब्लॉक है, जो विलेज है वहाँ से इसको शुरू हुई थी, 100 किसान को लेके, 100 हेक्टर सॉरी 100 100 हेक्टर ज़मीन पे 250 किसान को लेके इसको शुरुआत हुई थी, बाद में वो दूसरा चरण में वो बाराटंग की जो अड़ाजी की जो है एक ग्राम है वहां पर वो गया है, वहां आपको पता होगा वहां किसान जो है वो धान वगैरह खेती करते हैं, बहुत वगैरह दवाई वगैरह नहीं देते हैं, तो उसको वहां पर सेकंड स्टेज में शुरू किया गया है अड़ाजी के बाराटंग में, वहां भी वही 100 हेक्टर जमीन 250 फार्मर लेके दूसरा चरण में उसको शुरू किया गया, तीसरा चरण जो इस साल जो 2026 को शुरू किया गया मैडम, ये करमाटंग जो मायाबंदर जी ब्लॉक के
1: जी
0: पास है, करमाटंग जहां हमारी करेन

0: लुटे लोग रहते हैं और वो नेचुरल तरीका से धान का खेती करते हैं। उनके पास कई अच्छे अच्छे किस्म की धान है जो एकदम ट्रेडिशनल वेराइटी उनकी है, खुशबैया है, काला धान है, बर्मा ब्लैक है और मुसले है। ये सारी धान को हमारी GI मान्यता भी मिला है,
1: जी जी
0: एक जियोलॉजिकल इंडिकेशन भी मिला है। इस धान को हम कोशिश कर रहे हैं इसको भी प्राकृतिक रूप से खेती किया जाए और ताकि उसको एक अच्छा बाजार हमको उनको दे सके। तो प्राकृतिक खेती हमारी बड़ी प्रगति के साथ यहाँ चल रहा है। 3 स्टेज में इसको हम लोग शुरू किए हैं, 3 अलग अलग जगह में उसको शुरू किया गया है। फरारगंज का जो शुरुआत था वहाँ थोड़ा सा केमिकल और प्राकृतिक दोनों को कंपेयर किया गया था, तो धीरे धीरे जैसे हम मिडिल और नॉर्थ की तरफ इसको मूव किए हैं वहाँ बड़ा अच्छा परिणाम हमको मिल रहा है। जी
1: जो किसान पहली बार प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं वे इसकी शुरुआत कैसे करें और उन्हें मार्गदर्शन या प्रशिक्षण
0: जी जी
1: कहाँ से मिल
0: शुरुआत
1: सकता
0: करने
1: है?
0: के लिए हम लोग पर संपर्क करें, हमारी अलग अलग टीम है, हमारी आत्मा का भी कोई स्टाफ है जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो हम अपने उनके माध्यम से हम आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज दे देंगे प्राकृतिक खेती क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ को हम प्रयोग में लाते हैं या यूज करते हैं। ये सब यूज बिना किए आप प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते हैं, जीवामृत या घना जीवामृत, निमास्त्र, अग्निस्त्र, जो भी इसका इनपुट है वो सब आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्राकृतिक खेती सही से कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि प्राकृतिक कुछ भी नहीं दिए और खेती करने चले, ऐसे नहीं। जो हमारे उसमें जो कुछ सामान जो बनाया हुआ है जो इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज किए हैं, ये सामान दे के जो भी इसका स्लोरी, इसका घोल या उसको छिटकाने के लिए, बीज को उपचारित करने के लिए, मिट्टी के ऊपर स्प्रे करने के लिए, जो जो इनपुट उसमें जो भी बना हुआ है तो उसको दे के वो खेती शुरू किया जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक कंपोनेंट उसकी है प्राकृतिक खेती का, बहुत सारी उपादान है तो उसको लेके ही शुरू करना
1: शुरू
0: पड़ेगा।
1: करें।
0: जी।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं और विशेषकर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे प्राकृतिक
0: जी
1: खेती के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और सरकार के इस अभियान से जुड़ सकें?
0: हाँ, प्राकृतिक खेती के लिए मैं यही कहूँगा किसान भाई, इसको लेके थोड़ा बहुत संदेह या चिंता के विषय नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको अपना सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं शुरुआत में पूरा प्राकृतिक खेती करिए, आप देखिए उसको महसूस करिए, आप उसको धीरे धीरे समझ जाएंगे। और हमारी जो प्रशिक्षण प्रोग्राम मैडम होता है, जिसे हमने 3 क्लस्टर में बोला, हम प्रशिक्षण देते हैं समय समय पे उनको, कृषि सखी करके हर प्राकृतिक विलेज में जो प्राकृतिक खेती होगा वहाँ 4-4 कृषि सखी को रखा जाता है, उनको हम लोग सैलरी देते हैं, एक मोबाइल भी देते हैं ताकि वो उसके प्रचार प्रसार कर सके कृषि
1: जी
0: सखी के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बहुत ज़्यादा अच्छा से उनको। और एक बायो रिसोर्स मतलब विलेज रिसोर्स सेंटर भी बनाया जाता है, जो भी प्राकृतिक खेती का जो दवाई जो भी खाद यहाँ बना रहे हैं ताकि वो सबको दे सके, एक जगह में प्रोडक्शन होगा बाकी सबको दिया जाएगा। तो किसान भाई को यही मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा, प्राकृतिक खेती का अच्छा सोच और विचार है हमारी धरती माता को बचाने के लिए, तो
1: जी
0: आप लोग आगे आइए, इस खेती में शामिल होइए, फिर लाभ आप खुद ही देख सकते हो।
1: तो आज की बातचीत से यह समझने का प्रयास किया गया कि प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक वैकल्पिक पद्धति नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत, पर्यावरणीय संतुलन और किसान की आर्थिक स्थिति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राकृतिक खेती को लेकर सही जानकारी, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और उपलब्ध सरकारी सहायता की जानकारी किसानों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है ताकि वे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप सही निर्णय ले सके। इसी संदेश के साथ अब आपसे विदा लेने का समय है। हमारे साथ जुड़ने और प्राकृतिक खेती से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मन, थैंक यू।
1: और श्रोताओं, यदि आप प्राकृतिक खेती से जुड़ी किसी पहल या योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित विभागीय संस्थान से संपर्क जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ कि प्रकृति के साथ कदम मिलाकर की जाने वाली खेती हमारे किसानों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य की राह मजबूत करेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति नेचुरल फार्मिंग। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जीरो फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं अभय जोधपुरकर और साथियों की, इरशाद कामिल के लिखे शब्दों को संगीत में ढाला है अजय अतुल ने।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप शान और श्रेया घोषाल का गाया पी के फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे तथा संगीतकार थे अजय अतुल। अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार आवारापन फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मुस्तफ़ा जायद की और इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

अभी आप अलका याग्निक का गाया राज फिल्म का गीत सुन रहे थे। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। और इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा

राष्ट्र स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुर में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें, कल सुबह 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विश्व हृदय दिवस पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक, जिसके अंतर्गत विषय होगा हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। विशेषज्ञ होंगे CMO नोडल ऑफिसर NPNCD डॉक्टर बी अजित कुमार। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से, इस ब्रेक के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
4: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज साहसिक सैन्य कार्रवाई की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़ा 2026 के कार्यक्रमों के तहत सचिवालय के सभागार में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण राज के नाम पर नई ईल प्रजाति का नाम रखा गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। भारत आज उस साहसिक सैन्य कार्रवाई की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत भारत सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति का दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। आज से 10 वर्ष पूर्व 28 और 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड पर लक्षित सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह सैन्य कार्रवाई उसी महीने हुए उरी आतंकवादी हमले के प्रत्यक्ष और निर्णायक जवाब में की गई थी, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर कल प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में 2016 के इस अभियान को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया था।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आँख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा।
0: शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत श्री विजयपुरम के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडीन में शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में 3 जिलों के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के 75 शिक्षकों ने स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत के रूप में भाग लिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों का शैक्षणिक दौरा भी किया गया और शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका समापन करते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास एवं अधिकारिता समग्र क्षेत्रीय केंद्र ने जीवी पंत अस्पताल माई भारत और टेलीमानस के सहयोग से वृक्षाबाद स्थित केंद्र परिसर में दिव्यांगजनों और उनके देखभाल करने वालों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्र की निदेशक सुमिता मोल एस ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि विभिन्न चिकित्सा और प्रशासनिक विभागों के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन, भावनात्मक कल्याण और समय पर व्यावसायिक मदद लेने के बारे में जागरूक किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित इस सत्र के दौरान 60 से अधिक दिव्यांगजनों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य जाँच व परामर्श का लाभ उठाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है हिंदी पखवाड़ा और खोज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिंदी पखवाड़ा 2026 के कार्यक्रमों के तहत सचिवालय के सभागार में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के उप सचिव राजेंद्र इंदवा ने स्वागत भाषण देते हुए उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यशाला का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यशाला के पहले सत्र में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एस मोहनदास ने राजभाषा नीति अधिनियम नियमों और नोडल अधिकारियों के कर्तव्य की जानकारी दी, जबकि दूसरे सत्र में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अजय सिंह ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया और शासकीय कार्यों में ई टूल के उपयोग पर प्रस्तुति दी। इस कार्यशाला में सचिवालय और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के उप सचिवों, सहायक सचिवों, राजभाषा नोडल अधिकारियों और संबंधित सहायकों ने भाग लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जे. प्रवीण राज को भारतीय मछली वर्गीकरण और जैव विविधता अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक नई ईल प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखकर सम्मानित किया गया। कोची के समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर परमशिवम कोडीश्वरन ने रूसी विज्ञान अकादमी के संस्थान के सहयोग से अरब सागर में कोलम तट के पास 600 मीटर की गहराई से खोजी

0: कॉन्क्रीट ईल की इस नई प्रजाति का नाम ओरियोसोम प्रवीणी रखा है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में रिक्त 3 सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। मानविकी और विज्ञान संकाय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की इन रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग 30 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्यारहचरमा के सभागार में होगी। मानविकी संकाय के अंतर्गत श्रेणी 4 की 1 और विज्ञान संकाय के अंतर्गत श्रेणी 5 की 2 रिक्त सीटों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में मरीना पार्क बीच पर सफाई अभियान चलाया गया और मध्योत्तर अंडमान के पर्यटन विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने तट से प्लास्टिक और अन्य कचरा एकत्र कर उसे उचित निपटान के लिए नगरपालिका परिषद को सौंप दिया गया। संगोष्ठी के मुख्य उद्घाटन भाषण में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पर्ल देवदास ने आतिथ्य और अतिथि सेवाओं में तकनीक के महत्व पर विचार रखे, जबकि वन विभाग, पर्यटन विकास निगम और पर्यटन संघ के वक्ताओं ने स्कूबा डाइविंग, भविष्य की सरकारी योजनाओं तथा पर्यटन क्षेत्र की नई संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष पी. उमर ने वंडूर वार्ड संख्या 4 में नवनिर्मित सीमेंट कंक्रीट सड़क का लोकार्पण किया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश कुमार सिंह ने की तथा इसमें विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभियंता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना परिषद की प्राथमिकता है, ताकि निवासियों का दैनिक आवागमन सुगम हो सके और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज साहसिक सैन्य कार्रवाई की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़ा 2026 के कार्यक्रमों के तहत सचिवालय के सभागार में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण राज के नाम पर नई ईल प्रजाति का नाम रखा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ननकौड़ी होते हुए कैमलबे की यात्रा पर नालंद जलियान कल 29 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलियान 1 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमलबे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। MV कैमलबे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से

ना होगा और ये जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर MV कालीघाट परसों यानी 30 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान 1 तारीख को दोपहर बाद 3 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए MV बम्बुका कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इस जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगन शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। इस जलयान की अगली यात्रा शहीद द्वीप के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से होगी और ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। शहीद द्वीप के लिए MV नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप जाने के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर MV रानी लक्ष्मी कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान परसों यानी 30 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं अब सुनिए जन सूचनाएं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192240127 03192238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभिया कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया बनारसी बाबू फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे आनंद मिलंद। अब सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में लव के लिए कुछ भी करेगा फिल्म का ये गीत। अब्बास तैरे वाला के लिखे गीत को संगीत दिया है विशाल ने।

उदित नारायण के गाए लव के लिए कुछ भी करेगा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 28 सितंबर है और आज ही के दिन भारत की एक महान गायक का जन्मदिवस भी है। दोस्तों, भारतीय संगीत जगत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। बचपन से ही संगीत का वातावरण मिलने के कारण लता जी ने कम उम्र में ही गायन और अभिनय की शुरुआत की। उनकी मधुर आवाज़ ने हिंदी साहित्य के अनेक भारतीय भाषाओं के गीतों को अमर बना दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले और अजीब दास्तां है ये जैसे गीत आज भी श्रोताओं के मन में विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय सम्मान मिले। उनकी जयंती संगीत साधना और सुरों के प्रति समर्पण

दोस्तों, आज ही के दिन यानी 28 सितंबर को ही भारत के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की भी जयंती है। दोस्तों, उनका जन्म 1907 में पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। देशभक्ति से ओतप्रोत परिवार में पले बड़े भगत सिंह ने किशोरावस्था से ही भारत की स्वतंत्रता को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि गंभीर अध्ययनशील विचारक भी थे। उन्होंने युवाओं में देश प्रेम और राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के कारण उन्हें राजगुरु

सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनका जीवन त्याग निर्भिकता और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनकी जयंती हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण कराती है। मेरा रंग दे बसंती चोला।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज ही के दिन विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेबीज जैसी गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उसके उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2026 में इस दिवस की थीम स्ट्रॉन्गर टुगेदर यानी मिलकर अधिक मजबूत है। रेबीज मुख्यतः संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है और समय पर उचित चिकित्सा न मिलने पर यह घातक हो सकता है। कुत्तों का टीकाकरण, जिम्मेदार पशु देखभाल, जन जागरूकता और समय पर चिकित्सीय सहायता इसके नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व रेबीज

दिवस हमें मनुष्य और पशु स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने तथा सामूहिक प्रयासों से रेबीज मुक्त विश्व की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देता है। दोस्तों, ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, आज सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं हमारा ये गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। दिल का लगाना कोई खेल नहीं होता, दिल का लगाना कोई खेल नहीं होता, हर धड़कन में दर्द का रेल नहीं होता, हर धड़कन में दर्द का रेल नहीं होता। जिसे दिल दे दो उसे भूलना मुश्किल है, जिसे दिल दे दो उसे भूलना मुश्किल है। इश्क तो बस मेल नहीं होता, ये इश्क तो बस मेल नहीं होता।

0: मुश्किल है।
1: खुशियों का इंतजार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। खुशियों का इंतजार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। उम्मीद हारे चैन गवाए, बैठे हैं हम अश्क छुपाए। रुकना मुनासिब नहीं है अब, रुकना मुनासिब नहीं है अब, लेकिन अपने गमों को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं। लेकिन अपने गमों को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर

0: अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा कहकशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमराज फिल्म के इस गीत से। आवाज़ है महेंद्र कपूर की। साहिर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

0: अभी आप उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया वो तेरा नाम था फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे निधा फाजली तथा संगीतकार थे दिलीप सेन, समीर सेन। श्रोताओं, चित्र पर संगीत कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। अब प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, नकाब फिल्म से। आवाज़ है जावेद अली की और इस गीत को लिखा है समीर ने।

अभी आप सुखविंदर सिंह का गाया व लिखा मीनाक्षी टेल्स ऑफ थ्री सिटीज़ फिल्म का गीत सुन रहे थे और इस गीत को संगीत में ढाला था AR रहमान ने। अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो का गाया जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर तथा संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो के गाए जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 में है। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार के विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किए हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य होगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है, याद रहे। प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। और इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद। गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई

0: दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान

0: ये विदेशों में मौजूद भगौड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
0: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
6: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए

0: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10% one year before.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
6: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
7: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा

0: काम कर रहा है। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a 6-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries.

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1048 या 2371।

0: एक सात एक एक सात, या फिर 2 3 7 1 7 1 0 6, और 2 3 3 1 4 4 4 4 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे, और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल, हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किन किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी
2: नमस्कार।
1: और कौन से अस्पतालों में, कौन से अस्पतालों में?
2: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोताएं हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत PM जय की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों, वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हों तो आप भले किसी भी आय वर्ग पे हो, आय वर्ग के हो, आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने कर सकते हैं। आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहाँ तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप लेवा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है। आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा। आप जाएं, अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए। ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं, राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
3: मुनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: विशेष जी ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
2: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या वो आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से, या फिर 1-4-555-14 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

0: इसकी इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
0: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के पात्र जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए एक कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर PMJAY के अंतर्गत आता नहीं है, तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है, उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1-4555 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल?
3: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
3: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
3: मेरा छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर BPL का

0: राशन कार्ड नहीं है तो किस कितने आधार मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
2: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि एसईसीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं, उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
1: जी,
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, भी कोई जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है वो 6th में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात यह है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है लेकिन अब बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा, तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
2: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में

0: जुड़ जाएंगे।
1: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
2: मेरे दो सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है। लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे

0: और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने। दूसरा क्या, अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीष जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी, जहाँ तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है। लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में ज़रूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
2: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य हैं जो 70 वर्ष के ऊपर हैं, महिला हैं, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीज़न बाद में होंगे उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है जैसे ही वो 70 वर्ष पार करते हैं पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
2: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना ताकि जो भी मरीज़ हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर पर्ची लिखते हैं या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज़ किया जाए ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज़ों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है,

0: अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं, और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की ज़रूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा तो दो क्वेश्चन है। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज़ के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग, और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर हैं। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर हैं। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियाँ जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखा कर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1455 14555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं, ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है, ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 14555 14555। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
3: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो आयुष्मान में कवर हो जाएगा? दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल

0: 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या दो बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार जहाँ तक हमें पता है जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूँगा आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस कभी कभी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके केवल ये डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबागुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी, क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा, लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया, तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी, उन्होंने दम तो बहुत लगाया लेकिन 15 मिनट 14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका

0: का दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट आउट जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरीना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मू सुमिन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुखों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर

0: साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आइची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम दिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
0: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
0: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान मनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
0: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने

0: पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सेपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।

0: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
1: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals. And India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
0: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल, युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। राश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

अभी आप मुस्तफ़ा जायद का गाया आवारापन फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे सईद कादरी तथा संगीतकार थे प्रीतम। आइए अब सुनते हैं अमाल मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार मनोज मुंतशिर का लिखा MS धोनी फिल्म का ये गीत। और इस गीत को आवाज़ दी है पलक मुच्छल ने।

पलक मुच्छल के गाए MS धोनी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 24 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 7वीं तिथि यानी 29 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 44 सेकेंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: असली योग्यता इस बात में नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग किस तरह करते हैं। पद, पुरस्कार, प्रशंसा हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार, विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान ही हमारी वास्तविक योग्यता को दर्शाते हैं। योग्यता वो नहीं जो हमें दूसरों से बड़ा बनाए, बल्कि वो है जो हमें दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनाए। इसलिए अपनी काबिलियत साबित करने से अधिक उसे अपने कर्मों में दिखाई देने दें।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।